0: मैं कर लूँ।
1: अच्छा बेटे, अब तू जाके सो जा।
0: आज मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे पास सो जाऊँ।
1: आओ आओ बेटे, मैं तुम्हें सुना दूँ।